आत्मासा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन घट घट के पढ़ पढ़ की जान जब उदकारख

देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

अपना जान करो रखवार, बाहीं गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय। देग तेग जग मैं दो चलै, राखे आप मुहे और ना दलै। तुम मम कर हो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम

सो कहे हाँ जग माहे जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बेब विचार कछ नाहे जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै सुमाहे दोहरा

अब तुम करहु सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुगत फल पावेंगे भगवंत दोहरा।

श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

0: रैन दे हम आयू ते गनु में आन च, रैन दे हम आयू ते गनु में आन च।
1: गुरु अंगद देव पातशाह महाराज दे बचन सुन के बड़ा शर्मिंदा होया। हजूर पातशाह महाराज जी नूं सी चुका के माफी मांग के प्रशादा छक के अगे तुर गया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखिया भी इहदा नां सी हमांजू, बाबर दा बेटा, ते हमांजू दा अर्थ हुंदा खुशकिस्मत। पर इह सारी उम्र किस्मत ने इहदा विचारे दा साथ ही नहीं दित्ता। 1526 विच बाबर साडे देश दा पहला मुगल बादशाह बनिया, 30 विच इह हमांजू बिमार हो गया। बचन की कोई उम्मीद ना रही, इहदे दुआले परिक्रमा करके उन्हें खुदा दे चरणा च अपनी उम्र इहनू दित्ती। इह राजी हो गया ते बाबर जांदा रहा, और बाबर की मौत पुत्र दे मोह विच होई। 40 विच इह उदां घरों बकार हो गया। 55 विच जाके इहनू राजभाग मिलिया, ते अजे कुछ महीने ही राजभाग कीता ते लाइब्रेरी तों हेठां उतर रहा सी, पौड़ियां तों पैर तिलकिया धौण पर ने डिगा और संसार तो कूच कर गया। ते 12 साल दा अकबर फिर तीसरा मुगल बादशाह बने। तो कहने दा मतलब इह जिन्ना इहदा नां वधिया रखिया बाबर ने, पर किस्मत ने इहदी तकदीर दा किस्मत ने इहदा साथ नहीं दिता। तो हजूर पातशाह महाराज जी ने इत्थे रौनकां लातियां, बड़ी महिमा गुरु नानक साहिब महाराज की हो रही सी। दूरां दरेडियां तो लोग खडूर साहिब की धरती ते आ के नवे सेंटर बने, क्योंकि पहला करतारपुर सी, फिर हुण गुरु अंगद देव जी इत्थे आ गए, जिथे गुरु रौनक उत्थे ही लगनी सी। तो इत्थे गुरु की सिख संगत आउंदी, दर्शनां नूं जांदी। जिवें जिवें सिक्खी विकास कर रही सी, तिवें तिवें कुछ विरोध भी हो रहा सी। इह कन्नपाटे जोगियां दा बड़ा वड्डा डेरा सी, और इत्थे ओह लोक अपना गुरुडम चलाउंदे सी। गृहस्थी लोगां कोलों 6 महीने उहनां ने दाणा फक्का लैणा और वहम भरम पा के अपना गुरुडम चला रहे सी। उन्हां दा मुखी सी शिवनाथ। ओह बड़ा माण करदे सी भी असीं घर बार छड्डे, असीं स्त्रियां दौलत पुत्तर इहनां दा त्याग कीता, इस वर साडे वर्गा कहड़ा संसार दे। कुछ हद तक इह गल वी ठीक सी, गृहस्थ नूं छड्डणा कोई सौखा नहीं हुंदा। और उन्हां ने जिस नूं अपना चेला बनाउणा हुंदा पहलां ही उहनूं कहिंदे कि तेरा गृहस्थ नाल कोई नाता नहीं होवेगा, अज तों बाद तूं इस साडे नाथ पंथ दा मैंबर होवेगा। तो जदों महिमा वधी, गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी दी जयजयकारा होण लगियां, कीर्तन नेता प्रति हुंदा, लंगर रोज चलदे, गुरु की संगत आउंदी, तो धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दीआं गल्लां करदीआं संगतां गुरु कीआं वापस जांदीआं, दिल विच ईरखा जागी। तो कुदरती एक साल इस तरह होया, औड़ बड़ी लगी, बारिश ना होई, पानी दे उदों कोई बहुते साधन नहीं सी, विरले किसे टावें आदमी दा खूह हुंदा सी। तो बहुती जिहड़ी खेती सी ओह बारिश दे आसरे हुंदी सी। तो फसलां भुज्जण लगियां, पशु धरियाए मरन लगे। एक महीना नहीं, कई महीने इस तरह दे हालात रहे, और नगर बड़े बुरे हालातां विचों गुजरन लगा। तो कुदरत दे मारियां ने, मुसीबत दे मारे कुछ जमींदार उन्हां ने।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, स्कॉट रोड, सरी।
1: परमेश्वर दे चरणां विच अरदास बेनती करो, तुसी समर्थ गुरु हो, बारिश थोड़ी बहुती होवे, कोई फसल वाड़ी होवे, पशु पंछी धरियाए मर रहे ने और बड़ा बुरा हाल है। आओ इकत्तर हो के इलाके दे लोग जिवें गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी दे चरणां विच बेनती करदे, महाराज बड़ी बुरी हालत है इलाके की बनी हुई, कृपा करो, परमेश्वर के चरणों में अरदास बेनती, तुहाडी गल मन्नी जानी है। तो बारिश होवे, लोगों का साह सौखा होवे, आओ लोगों के दिल की वेदना नूं इक कविता विच इस तरह बने किया जा रहा है।

भी अहन सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह।

हर लेव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडावत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तन अंतर हम मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलहे चुभै दुख पावहे जमकाल साहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम अधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा।

उदीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

दुख मिलन लग पवे संबंध दुश्मनी दिस बदल जांदे रिश्ते दराड़ पै जांदी है। मनुख नूं भिरा नहीं चाहिदा सुख चाहिदा है। अगर भिरा तो दुख मिल रहा है तो भाईचारा खत्म हो गया। सामने ते दुश्मन खड़ा है। मनुख नूं मां बाप भी नहीं चाहिदा सुख चाहिदा है। मां तो पीड़ा मिल रही है पिता तो दुख मिल रहा है। संबंधां विच विछिन्न होंदे जद कोई मां पुत्र दे समाजिक जीवन विच बहुत मदाखलत करन लग पवे और ये मदाखलत जद उसनू दीवार दी तरह खड़कदी है तो पुत्र भी समझ लैंदा है ये मां मेरे लिए बाधा है। ये ना होवे तो ठीक है, एक पासे हो जाए तो ठीक है। और इसे तरीके नाल मनुख नूं पिता नहीं चाहिदा सुख चाहिदा है। मनुख नूं मित्र नहीं चाहिदा सुख चाहिदा है। मनुख नूं पत्नी भी नहीं चाहिदी सुख चाहिदा है। यूरोप विच गालबन 45% शादियां तलाक हो जांदियां और अमेरिका दे कैलिफोर्निया सूबे विच 83% शादियां तलाक हो जांदियां टुट जांदियां इक सूबा। कारण मनुख नूं पति नहीं चाहिदा पत्नी नहीं चाहिदी। हकीकत है चाहे कोई कितना आखे मैनूं पत्नी नाल बहुत प्यार है पति नाल बड़ी गहरी सांझ है। मनुख नूं पत्नी नहीं चाहिदी सुख चाहिदा। मनुख नूं पति नहीं चाहिदा सुख चाहिदा। पत्नी तो दुख मिल रहा है पति तो कलेश मिल रहा है। रिश्तियां दे दराड़ पैंदे ते तलाक तक नौबत पहुंचदियां देर नहीं लगे। मनुख नूं धन भी नहीं चाहिदा सुख चाहिदा। किसे डाकू ने सीने दे उत्ते आके पिस्टल रखे है और आखे जेब दे जितना धन है दे। अगला कहिंदा ऐ लै छड्ड मैनूं। मनुख नूं धन भी नहीं चाहिदा सुख चाहिदा। मनुख नूं जीवन नहीं चाहिदा जिंदगी नहीं चाहिदी सुख चाहिदा। जिस दिन पता चल जाए जिंदगी ही पीड़ा है जिंदगी ही दुख है तो खुदकशी करदियां भी देर नहीं लगती आत्महत्या करदियां भी देर नहीं लगती जिंदगी नूं छोड़दियां भी देर नहीं लगती। मिलणगे इस तरह दे दुनिया दे बंदे किसे ने मां बाप नूं छोड़िया किसे ने भरा नूं छोड़िया किसे ने मित्रां नूं छोड़िया किसे ने पुत्रां नूं छोड़िया किसे ने पत्नी नूं छोड़िया किसे ने पति नूं छोड़िया किसे ने धन संपदा नूं छोड़िया पर किसे ने ते अपनी जिंदगी नूं ही छोड़ दिता है ओदा ही त्याग कर दिता नहीं चाहिदी है जिंदगी। प्राणा विच प्यास ते है सुख दी तलाश ते है सुख दी पर झोली दे सिवाय दुखां तोर है कुछ नहीं। कहिंदे तलाश ही लाजमी नहीं तलाश सही थां ते कीती जाए ए भी बड़ी लाजमी है। जैसे कोई रेत नूं कोलू विच पा के तेल कढ़न दी कोशिश करे चाहिदा ते तेल है पर रेत नूं पीण नाल तेल नहीं मिलदे तिलां नूं पीण नाल तेल मिलदे ने। तलाश ते ठीक है चाहत ते ठीक है पर चाहत दा ठीक होना ही काफी नहीं। चाहत दी जिथों सही ढंग नाल पूर्ति हो सकती है इसका बोध होना भी बड़ा लाजमी है बहुत लाजमी है। इस वास्ते कहिंदे ने इक्को ही दुख है अज्ञान इक्को ही पीड़ा है अज्ञान इक्को ही अवगुण है अज्ञान इक्को ही पाप है अज्ञान और इक्को ही जिंदगी दी मुसीबत है अज्ञान इक्को ही मूर्खता है अज्ञान और इक्को ही आनंद है ज्ञान। ज्ञान ही भगवान है वेद ही भगवान है। भारत दे ऋषि बहुत प्राचीन समय तो कह रहे ने ज्ञान ही भगवान है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। ज्ञान परमात्मा है ज्ञान गुरु है। ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है। अज्ञान विच जीना शैतानियत दे जीना है। ज्ञान विच जीना भगवान दे जीना है। शैतानियत दुख है शैतानियत पीड़ा है शैतानियत कलेश है। इसनों मिटाए बिना जीवन दा सुखी होना

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the most yeah, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

ला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचे।

जो तुद पावै साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक।

जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तांदे पानी तोता उतरसखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए ओ तोए, परिये मत पापा कै संग, ओ तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन,

हितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सेंस अठारह कहन कते बा असलू एक ता

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। केवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार।

या दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेख है सिर जनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, एक राह पथ पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिद्ध।

मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, जिथै भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सत दाता दयालं अछेति अपेदि अनामंग अकामंग समस्तो पराजि समस्तस्ततामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक देव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वोचित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मितपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्षक आदिश्री तरम सर्वां बरनांडिय अंडंड भांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुमेश के आगा जिकर्म।

गुणगण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अभंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान।

अखल खंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, धृत के तरण है, जग के करण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वंकार है, सर्वंकार है, सर्वपाशी है, सर्वनाशी है, करुणाकर है, विश्वंभर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कल खंडस है, पारते पार है, करुणाकर है, अजपाजप है, अतपात्व है, अकृताकृता है, अमृतामृता है, अमृतामृता है, करुणाकृत है, अकृताकृता है, तरणी तृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजभाकृत है, अमृतामृत है, नर नायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, निर्मनायक है, सर्वपायक है, पाव पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकर है, हरताहर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजांग पुरा छंद नमो, सूर सूर्दे नमो, चंद्र चंद्रे नमो, राज राजे नमो, इंद्र इंद्रे नमो, अंधकारे नमो, तेज तेजे नमो, बृंद बिंदे नमो, बीज बीजे नमो, राज संताम संक्षात रूपे नमो, परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो, जोग जोगे नमो, ज्ञान ज्ञाने नमो, मंत्र मंत्रे नमो, त्यान त्याने नमो, जुद जुद्धे नमो, ज्ञान ज्ञाने नमो, पूज पूजे नमो, पान पाने नमो, कले कर्ता नमो, शांत रूपे नमो, इंद्र इंद्रे अनादंगभूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो, आसे आसे नमो, भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे, एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरो करजोग जति के सूर सुरार धन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनेवगति के सारी देश को देख रहे मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंध को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दह हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन गुने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंयम नेम अनेक वसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिक है पौन हार जति जत हार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दले

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। भीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हार सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजातक दान अनेक स्वमर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फा।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास न वरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख

शिव जो अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरत निरालम जानत वेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्ण पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख्त है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे।

अंतर आत्मा संभाले आप छड सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए जे को गुर तेरे मुख होए दिल सतगुरु मुक्त ना पा।

वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्यार। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन हो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ा बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़िया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है, ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकनाती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए। चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिट ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है।

0: काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा दी प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन की गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा की एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होने के बावजूद उस दे अंदर प्यारे की प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ए मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करे परमात्मा दी बंदगी करे जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया, क्यों अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत वे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा, लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुण प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिब लाई, कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरणा विच ओना ने फिदा कर दिता, ओना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणा नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सच्चे पातशाह ये तां आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर यह दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकाण वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट करन लई। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, घो के, उहदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा होईयां, लहरां पैदा होईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वजी, कमल दी नाली नूं वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उहनूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सज्जे, उहनूं सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं धक्दी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाणियो जिहड़ा बंदा मित्रता करदिआं होइआं भी उलामे गिले शिकवे करदा है, उह कदी प्रेमी नहीं हो सकदा, उह कदी प्यारा नहीं हो सकदा। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं ते बाणी विच इह गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नूं प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरां खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नूं, तेरे इस तने नूं रोज ए ठोकरां मार दे, छड परा इहो जिहा पानी नूं। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नूं छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नूं छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना है, मेरी खौंद नूं खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना इहदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा है। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, जैसी जल कमले जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया है, जे लहरा उनु उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने, ती विगसै असने ओ लहरा दिया ठोकरां विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दिया पिंगा झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत की जिमें कमल का फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत पिया करदा सी। जे किसी ने वट्टा चुकिया, जे किसी ने दीवाना किया, जे किसी ने मस्ताना किया, जे किसी ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिमें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उन्ना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़प पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है, ते जदों किते तोटा आ जाए सच जाणो ओ मच्छी दी तरह लुड़चन लग पैंदा है, तड़फन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर, कैसी कह लगे जैसी मछली नीर।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन, केड़ी दवाई देंदा है। आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै, जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तो है ही ऐसी।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋਤ ਸਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਧਿਆਕਤ ਔਰ ਲੁਭਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋ ਮਨ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾ ਸਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹੀ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹਿ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਸ਼ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਸ਼ੂ ਨਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਵੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਰ ਹੂੰ ਤਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਦੱਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤਿਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुदै को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कल सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपनकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारे जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीव है
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने अस्तूर
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: चौवर नाम है जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत हो
0: संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दाद संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक रामदास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत देता सा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थ वासी
0: कई कोट बन प्रमेय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नापतन नाम त्यावहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट पै अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने कोर
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: यत यत लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र वृक्ष बजाए
1: कई कोट पवन पानी बै संतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट ससियर सूर नखत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर शतर
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस तम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र
1: कई कोट की रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की ये चिर जीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृगाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिप्त रे आप भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहु जोनी फिर है
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मा चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भई बैरागी
0: राम नाम संग तन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
0: जिनको मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जगत की न विस्तार
1: कई बार बसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: सत्य होए प्रभ माहे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: जनहो वत्या तम प्रकाश
1: कई कोट तत् के बेते
0: सदा नहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भये सर सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गावे
0: आत्म रस सुख सहज समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग
0: जोत सभावे सोई होग
1: फिर मैं थाप उताप नहारा
0: अंत नहीं किस बारा वारा
1: हुक्मे धार अतार रहावे
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार
0: हुक्मे अनक रंग प्रकार
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई
0: नानक सब में रहा समाई
1: रब भावे मानो गत पावे
0: रब भावे ता पात्र त्रावे
1: रब भावे बिन सास ते रखे
0: रब भावे ता हर गुण पाखे
1: रब भावे ता पत उधार है
0: आप करे अपन विचार है
1: दोहा सरिया का आप स्वामी
0: खेले से अंतर जामी
1: जो भावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि और न आवे
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे
0: जोत सभावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: जोत सभावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया मह रचे
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस धावे
0: नमक माही चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: छिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जां का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दह दिस प्रगटावे
1: जां को अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा न गणे जग
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीवै देख बढ़ाई
1: इसका बल नाही इस हाथ
0: करन करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ
0: जोत सभावे सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसे
0: अब हूँ सोग हर करंग हसे
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: अब हूँ उब कास प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ निर्द करे बहु भांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल
1: अब हूँ होए बह बड़ राजा
0: कभु भिखारी नीच का साजा
1: कभु अब कीर्त में आवे
0: कभु भला भला कहावे
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कभु होए पंडित करे बख्यान
0: कभु मोहन तारी लावे ध्यान
1: कभु तट तीर्थ स्नान
0: कभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभु पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जोन परमे परमिया
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तवे न जावे
1: जो भावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कभु साध संगति पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसे पर ब्रह्म का संग
1: ज्यो जल मह जल आए कटाना
0: ज्यो ती संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप हंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस कौसुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब ता रे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना नक हो छूटे
1: सहस कटे लख को उठता वे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे कब कब मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जा
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रभ सोए
1: जो किश पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हो कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आपे
0: रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किश होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घटघट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जप नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख ना सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बवार तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: किरत ने दिक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजे न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया किरत न मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वरतै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनु कृपा करे तिस अपना नाम दे
0: वडपागी नानक जन से श्लोक
1: तजहु सियान पुसुर जन हो सिमरहु हर हर राई
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी
1: मनुख की टीक बिरथी सब जान,
0: जीवन पौ एक है भगवान,
1: जिसके दिया रह अगाही,
0: और न तृष्णा लागे आए,
1: मारे राखे एको आप,
0: नानक कह कृष्णा ही हाथ,
1: इसका हुक्म भूत सुख होए,
0: इसका नाम रख कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर पुरा सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोए,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो,
1: नैनो पेख ठाकुर का रंग,
0: सदा संग पिन सह सब संग,
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: आदर ज्ञान नानक उजल मथा,
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: राम नाम जो करे विचार,
0: शीतल मंतक नि संसार,
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने,
0: एतुत कियो सोजी जाने,
1: नाम संग जिस का मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जाने,
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
1: साथ संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
1: धन दिन कीर्तन केवल बखियान,
0: रस्तमा सोई निर्वाण,
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: जिसकी कटिए जम की फसा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक सन लागे दुख,
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं डुलावे,
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे,
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
0: अपने कार्य में आप समाया,
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब पूजे,
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
1: मैं क्रिश्चन मैंने किशमरे,
0: अपने चलते आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
1: आपे आप सगल मह आप,
0: अर्घ जुग त्रच था व्यथा,
1: अविनाशी ना ही किस खंड,
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड,
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए ता नानक जाप,
1: दिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
0: सगल संसार उदर तन मंत,
1: प्रभ के सेवक सगल उदारण,
0: प्रभ के सेवक दुख विसारण,
1: आपे मेल लय कृपाल,
0: गुर का शब्द जप भई निहाल,
1: उनकी सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे,
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
1: जो किस करे सो प्रभ कै रंग,
0: सदा सताप सह हर संग,
1: सह सुपाई हो वह सो होए,
0: करने हार पछाने सोए,
1: प्रभ का किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
1: जिसकी उपजित समाही समाई,
0: सुख निदान।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माही
0: जिसने वृथा कोई नाही
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन की कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या गोबर पै
0: जा सब कुछ तिसका दिया दर्प है
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दातार
0: जिस दिन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर है हो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: साजिब मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइया कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रहनी
0: शक्ति उच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिए तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होए सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी प्रभ मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: ध्याय ध्याय भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जा की लीला कीमत नाही
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जा को परमाई
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे तिन माही
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जा के हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सिफ्ट सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: सब कह रंग राज जन रहे
0: गुर कह वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जग कह संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन कह संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस अनित त्याग हो त्रंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर लेहु भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: सुनत कमाप्त होत उधार
1: आप त्रैलोकै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिनकै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करहो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: दौर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन कै मुख भनि
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरण ता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊच ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुख मनी
0: सबते

परथिस अदिश अदृश अकृश भगवती छंतव प्रसाद कथते क्या छे ज दिश क्या भिज भेस क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सो क्या क्या वधूत बरन के बिभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्म तुज है के शोक बरन के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपनूप है के आद आदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है।

करीम है, के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र दान है, के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप है, के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है,

निरुक्ता स्वरूप अंतर्मुक्त विभूत पर भूत प्रभ सुजूत सुदा सदैव स्वरूप भेदी अनूप समस्तो पराज सदा सर्व साज समस्तुल सलाम सदैव लकाम दरबाद स्वरूप गाद अनूप ओंगाद रूप अनाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्वानो।

क्या जब स्वरूप है क्या मित्तो विभूत है क्या मित्तो पस है क्या आत्मंग प्रभा है क्या चलंगा नंग है क्या मित्तो अभंग है मध भार संत है प्रसाद मन मन पर।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासे सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मूल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करी मूल रहीम चतर चक्रवर्ती चतर चक्र

गुंजत गोड़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भैख भवानक भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेनांत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम ने मनेक बसेख वेद पुराणक तेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन आहार जति जत धार सब सो विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत।

अहनस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै शिव तक समाधि नूर अर

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस किया अनुभव किया जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते बगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है, और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लिए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ए नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज कर देने जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखानु जन्म सुख है जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है, मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है, मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए, जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन, हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिश करन विच मौत बैठ जाए उस तों पहले इस नूं घरों कढ़ो, इस तों पहलों कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा, जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो, यहीं नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नूं दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनूं ये समझ आ जांदी, जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने, जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है, ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, इते पत्थर है। जो मेरी समझ देच नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया देचते नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देच नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, भावे होवे, भावे जगत दे च है, पर मेरी दुनिया दे च नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लईए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदे होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहे है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदे होया प्रकाश तो बिना जी रहे है। परमात्मा दे होंदे होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ दे च नहीं, जो मेरे बोध दे च नहीं ओ नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहिंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ, ਉਸੇ ਪੀੜਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਿਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸਲ ਆਦਮ ਕੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਸਲੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਅਬ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਭਟਕਣਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਇਹੀ, ਪਾਠ ਪਠਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। दूसरा अंधेरे विच चलना चलना नहीं होता, भटकना होता है। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, कना भटकना, ना मंजिल दिखाई देती है ना रास्ता दिखाई दे रहा। सारी जिंदगी मनुख की किरत विच बतीत होती है, ना किरत दिखाई देती है ना किरत का अंजाम दिखाई देता, ना कर्म दिखाई देता, ना कर्म की आखिरत दिखाई देती है। तो इनू करना कहोगे? नहीं, ये तो भटकना है। इनू चलना आखोगे? ये तो भटकना है। हजार अंधे दूसरी समत विच आ रहे हैं, टकरा ही जाएंगे। जगत टकराव है, कौमा टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्मा ने मन रे संसार अंध गए, समस्त संसार अंधेरे दिच जी रहे, अंधकार दिच जी रहे, मूर्खता दिच जी रहे, अचेतपणे दिच जी रहे। इस वास्ते इसका सारे का सारा करना गलत है। अंधे का चलना भटकना है, मूर्ख का पूजा पाठ भी व्यर्थ है, मूर्खता विच कीता होया दान वह भी व्यर्थ है। मूर्ख दे हर कर्म दे चों हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं। मूर्ख दी हर कृत दे चों बिल्कुल बदबू ही होवेगी, वासना दी प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे उन्ना दे चों एक ही सुरमोर पुन है, सुचेत हो जाना, सावधान हो जाना, समझ आ जानी। एक कोई गुनाह है जो सारे गुनाहां दी जन नहीं है, एक कोई पाप है जो सारे पापां दा पितामा है, वो है अज्ञान, वो है मूढ़ता। बस इसे तो सारे गुनाह जन्म लेंदे ने, इसे तो जो है सारे पाप जन्म लेंदे ने। और एक कहने दे कोई संकोच नहीं जो मेरी समझ दे नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे नानके दादके सौरे पशुमा दे भी है, नानी उना दी है, सस दी उना दी भी है, भैन बिरा उना दे भी है, चाचे ताए मामे मामिया मासिया उना दी भी है। समझ नहीं है, समझ नहीं है। चूंकि समझ नहीं है तो पशुआं दी दुनिया दे च परिवार नहीं है, नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखां दी दुनिया दे च निरंकार नहीं है, नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जीवदा है। जी रहा है ईश्वर तो बिना जी रहा है पशु, जैसे भैन बिरा दे संबंधा तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइया दे संबंध तो बिना जी रहा है, नानके दादके सौरे होंदे होया भी उना दे बोध तो बिना जी रहा है, परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते ही गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अंधे चान रखिए दीवे बले पचास, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पंजा जल दे चिराग सामने ने। अगर मनुख अंधा है तो पंजा दीवे व्यर्थ हो गए। पता नहीं मनुखता दे सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने। जलदे रहे, वंडदे रहे रोशनी, और जिंदगी दे दीवे रिच वो अपना होम जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे, और उस तो जो रोशनी पैदा होंदी रही कोशिश से उन्हें जगत नू मिले। पर गुरु नानक कहंदे ने अंधे चानन रखिए दीवे बले पचास जल्दे पंजा दीवे व्यर्थ ने अंधे दे सामने पत्नी मरानू नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहिंदे ने जिस क्लास विच जिस स्कूल दी क्लास विच बच्चे बहुत फेल हो जान रह जान पास ना हो सकन स्कूल दे मुंतजिम सोचदे ने टीचर बदलिए उस्ताद बदलिए अध्यापक बदलिए इतने बच्चे फेल हो जांदे ना शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होवेगा फिर की होवेगा। प्रकृति अध्यापक बदल दी रही और इक्को ही श्रेणी दी सनातन मत दे चवी अवतार आए। गुरु नानक ने दस रूप धारण किए धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप च गुरु अमरदास जी दे रूप च फिर गुरु रामदास जी दे रूप च फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप च फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप च फिर शमा जली गुरु फिर बालक गुरु धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी फिर रोशन जमीर बनके रोशन चिराग बनके महा सूरज बनके प्रगट होए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है अंधेरा ही अंधेरा है। जर दरस्त आए ईसा आए मुहम्मद आए मूसा आए ये कहण दे कोई संकोच नहीं अरब सारा अज भी अंधेरे च मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे च अवतारा दी धरती कैलाण वाली ए हिंदुस्तान ए भारत अज लाउत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने समस्त चीन अज भी अंधेरे च अज भी अंधेरे च सूफिया नूं जन्म देण वाली ईरान दी धरती शेख सादी हाफिज मौलाना रूम शमस तवरेज और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम इक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती दे च ईरान अज भी प्रबल अंधकार दे च भटक रहे हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उना मनुखां दे सामने जो अंधे ने अंधे ने अंधे ने। ये अंधा पन केड़ी गल दा है क्या प्रकृति अंधिया नू जन्म देंदी है नहीं किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा सी देख सकदे हां जो जन्म तो अंधा होवे प्रकृति ते सुजाकियां नू पैदा कर दी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकदे परमात्मा ते ज्ञानियां नू पैदा करदा है बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान गौ दे बछड़े ने जन्म लिया थोड़ी देर बाद उठदा है और गौ दे अस्तना दी तरफ जो है लपकदा है इस नू ज्ञान किसने दे दिता तेरी खुराक इना अस्तना दे च है तेरा रिजक अस्तना दे च पे है ते फिर इस नू चूंगण दा बोध किसने दे दिता ये ते सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है राजक रहीम दी तलाश दा बोध भी राजक रहीम दे रहा है परमात्मा दे रहा है सबनू ज्ञान दे रहा है सबनू सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है एक ते ओ अंधा है जिसनू कह दईए जिदी अखां विच रोशनी है ही नहीं एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना अखां खोले ही ना बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं खोलते ही नहीं, और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते हैं, ताब गवा बैठते ने, और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जुन देव जी, जैसे उल्लू सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। कि उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नु की आखांगे जिसके जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। कैसा ते नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या है, तो कहने विच कोई संकोच नहीं, उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है, बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है, क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इन्हू उल्लू कहने विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत गुगना, पंजाबी विच उल्लू नू गुगू कहिंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत गुगना, कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसकी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसकी चाल बन जाए, टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए, ते कल कलेश जिसकी जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी, इस दया नू हृदय विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पे ने, औषधियां नाल भरे होया झोला लेके, अपने हृदय विच तरह तरह की औषधि रख के, जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके नौ खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਲਵੋ 2.99 ਨੂੰ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕੈਰਟਸ 99 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है के आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਮਲੀਨ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया।

0: ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਨ ਖੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਨਾ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਖਾਲ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਖੋ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰ ਕਮਲ ਕਿਰਨ ਆਗਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਈਲਸ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोना दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने सकूल विच, किसे ने किसे कॉलेज विच, जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है, ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती, प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि असमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथो तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा असमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए, चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलदा है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़दे वाले पास्यों शाम नू उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है, ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने ता अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है, ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नू पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नू मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नू पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती एक टिक होके, ते अर्ज कर रहे हां कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए, खेड़ मूह बखाले, खून पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने, जमीन ता ओही है, छप्पड़ टोबा ता ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच ना सुकी, जमीन ते प्रफुल्लत होणगे, पानी रुकण दी देर है, ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने, ते पानी दे विच ओ पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं वो खिच पानी विच उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले, हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है, वह आसमान दे उते वह धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पाण लग पिया, ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै, उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचण लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपीया कदी भी उची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा, वह भी बदलां नूं देख के उची उची पुकार लग पिया, उहदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है, इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, के पानी जेड़ा वह सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमक दे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले, न्यू कवल जन जानिया, खिड़ मूह बखाले, मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है, पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जेड़ी प्रीत है वो तोड़ निभण वाली, वो रस्ते विच टुटण वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती कीती, ते जदों असीं बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्होंने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां, कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नूं प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना है परमात्मा नूं प्रेम करन तो बिना, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउनी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम, प्रीत, प्यार, नेह, ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर, तन अंदर परमात्मा लई प्रीत नहीं, प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने, कहिंदे ने मानो ओह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याक है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी, पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है। जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती। हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है, ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं, ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा, सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें, परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना, बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं, जोबन विच नहीं, ओ ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान ओना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर ओ कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं हुई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं, अपने अंतले समय भी वो महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने, अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया। संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलिया पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मुरीद ने क्या, बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी, पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच, उदे जिक्र विच, उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही, शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो, विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा। लियाओ पानी, लियाओ आव, ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू, प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुन प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां। उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल, पहली उदाहरण ए वे, मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिब लाई। कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं, अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरना विच ओना ने फिदा कर दिता, ओना ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणा नू अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सचे पातशाह, ए ता आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर ए दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहने कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझन लिख है, अपनी जिंदगी दे टुकान वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नू प्रगट कर ले। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, को के, उदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा हुईयां, लहरां पैदा हुईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई, ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नू वजी, कमल दी नाली नू वजन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लैके फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नू पछाड़िया, कदी ओनू लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सजे, ओनू सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सजे नू धक्दी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहन लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नू प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम ने बुलाई कि को जा प्यार होवे, प्यार जेड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाने जेड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा है, वह कदी प्रेमी नहीं हो सकता, वह कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नू पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नू, ते बाणी विच गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरा खान दी। ये पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरा मार दे, छड परा इहो जे पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता, उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने, इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना, मेरी खोंद नू खतरा है। कह लगे ना सूरज दा प्यार, ना एदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने, एक गुण भी तो मेनू पानी ने कृपा करके बख्शे ने ना, जिन्हें गुण दिते ने एदी ठोकर भी सहारांगे। हजूर ने कहा ऐ मनुख, प्रेमा भगती दा अर्थ है कमल दी थरा तू प्यार कर। किवें? परमात्मा ने तेनू सुंदर दे दिती है, परमात्मा ने तेनू गुणा दी सुगंधी दिती है, परमात्मा ने तेनू सुरत दिती है संसार विचो निर्लेप रहन दी जुगत दिती है, परमात्मा ने तेनू ताकत दिती है। करोड़ा जन्मां दी दूरी होण दे बावजूद तू सुरत करके ओदे चरणां नू पकड़ के खेड़ा प्राप्त कर सकना। जिस परमात्म देव ने कमल दी तरह तेरे ते इन्नी कृपा कीती होवे, ते जे फिर भी थोड़ा जा झटका लगे दुनियावी, ते यक लखत परमात्मा वालों मुंह मोड़ के पिट करके चला जाए, सच जानी ए कदी सच्चे प्रेमी नहीं हुंदे। प्रेमी तां होवे जिहड़ा ठोकर खा के भी अपने प्यारे दा लड़ कदी ना छड्डे। एवे प्रेमा भगती बाबे नानक ने ऐसी प्रेमा भगती कीती, ते बाणी विच बचन कर गए, कहन लगे रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर। रे मन दा अर्थ है अपने मन नू संबोधन कीता, अपने मन नू मुखातब कीता। कहन लगे रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर, जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया, जे लहरां ओनू उठ के पछाड़ दियां ने, धक्के मार दियां ने, पी विगसै असने, ओ लहरां दियां ठोकरां विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरां विचों भी प्रेम दियां पिंगा झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत कीती जिवें कमल दा फुल ठोकरां सहार के भी प्रीत प्या करदा सी। जे किसे ने वट्टा चुकिया, जे किसे ने दीवाना किया, जे किसे ने मस्ताना किया, जे किसे ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए, प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है, ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिवें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे तो प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उतना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़प पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है, ते जदों किते तोटा आ जाए सच जाणो ओ मच्छी दी तरह लुड़चन लग पैंदा है, तड़पन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खर्चों प्रीत कर। कैसी? कहन लगे जैसी मछली नीर, जिमें मच्छी पानी नू प्रीत भी कर दी है। ज्यों अदकाओ तो सुख घना, जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यों अदकाओ तो सुख घना, मन तन शांत शरीर, ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा, क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आत दी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है। मच्छी पानी तो बिना किसे नो समझौता नहीं कर दी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खर्शों प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो। इस तरह कहन लगे रे मन ऐसी खर्शों प्रीत कर, जैसी चात्रक में, जिमें एक पपिया स्वांती बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिमें एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है। ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने, पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा। तालाब पानी दे भरे ने, पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा। दरिया पानी दे भर के वगदे ने, पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वखरे वखरे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा। ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांती बूंद नू प्यार करदा है, ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जानो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहीदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण इहदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चात्रक कदी भी समझौता नहीं करदा स्वांती बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया, दाता जी प्रेमा भगती की है? उन्होंने एक प्रमाण दिता, ओहा प्रेम पिरी, प्रेमा भगत की है? ओहा प्रेम पिरी, कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के हीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे, गुरु नू छड़ दे, कीमती हीरे चुक ले। जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर ले, पर नाम दे मोती नू छड़ दे। जे कोई ओदे सामने कीमती गज, ए भी मोती कह, सामने लिया के रखे, तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहंदे ने जेड़े प्रेमा भगती करन वाले ने ओ कह रहे ने, ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नह नह नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड़, तेनू आ तख्त दे देने, तेनू आ दुनिया दा हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने। अगो उत्तर मिलदा है, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नह ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री, एवे प्रेमा भगती, मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती, ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा, रे मन ऐसी खर्शो प्रीत कर, जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले। पर प्रेमा भगती करने वाला बूंद नू एक बूंद ना पवही, के जितने मर्जी पानी दे भंडार होण, पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फुल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता, तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता, ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है की। प्रेमा भगती कीती ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असीं पढ़ने। प्यारियो प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकण दा यतन करिए, पांच सात मिनटां भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण, निंदिया करनी होवे, मैं कई बार अर्ज करना, बंदा बीमार होवे ना, हमदर्दी प्रगट करन जाइए ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा, घर दे भी कहणगे बुलायो ना, डॉक्टर साहब ने ब्रोकिया है वरजिया है इना बोलना नहीं। आम गल्लां करदियां ऐसता ऐसता बोलेगा, किते थोड़ा जिहा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है, सच जाणियो पता नहीं कित्थों आवाज निकलदी, ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इन्ना उच्चा बोलदी है? रसना संसार लई कूकेगी, रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पै प्रेमा भगती विच, बाबा नानक जी कहिंदे ने फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी, सिर तो पैरां तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा, हे जे वेह गुरु अर्जुन साहब श्लोक संस्कृति, हे रस गए मधुर प्रै तोयंग, हे जबान हे रसा नू चखण वालिए, तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने, तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने, हे जेवे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, जदों किते सत नाम वाहिगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है, तू मूह च है ही नहीं, अंज लगता जिमें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रसगे मदर प्रै तोयंग सत हतंग, सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग, जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है, तां ओ अग लांदी ए, सिर्फ तू तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख देनी है। ध्यान दिया जे, जे जबान दी शक्ति, जे रसना दी ताकत, जे जेवा दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी हलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी है, जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी है, चेते रखियो इहदे कोल शक्ति है, जे रब रब जपन लग पए ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी है। कली दूरी पांदी नहीं, यह दूरी मिटा भी सकती है। हजूर ने बाणी विच मेहर की, जदों उन्होंने प्रेमा भगती भी जुड़े ते बाबा नानक जी नू जे कोई पुछदा है कि सतगुरु जी परमात्मा नू पाउण दा मार्ग की है, ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने इह मार्ग है एक दू जीबो लख हो है, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, इन्नी भगती कीती, एक जबान तो लख जीब हो गई, लख दीब तो भी लख हो गई, ते उस भी लख जीव विचों एक एक जीव ना लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपया, ते बाबा नानक जी कहिंदे ने इन्नी कमाई करें ता जगत दे मालक भी तू मिल सकदा, कि इहो जी प्रेमा भगती को कर सकेगा? बाबे नानक जी दा अपना अनुभव है, एक दो जीवो लख हो है, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां, एक नाम जगदीश, प्यारिया ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए आकीस, एने रस्ता ए ही मार्ग प्यारे नू पाउण दा, ते जे अंदर तेरा रुख है ते बाहर प्रेमा भगती वाले दी रीस करने, फिर सुन गल्ला आकाश की, कीता आई रीस नानक नदरी पाई है। प्रेमा भगती ओदी नजर नाल मिलदी है, ओदी बख्शीश नाल मिलदी है। कूड़ा कूड़ी ठीस, ठीस दा अखरी अर्थ हुंदा गप मारना, कहिंदे ने जे ओदी नजर नाल तेरे कोल प्रेमा भगती नहीं, एवें जमीन ते रेंगण वाले कीड़े, तू आसमान विच उड़न वाले पंछियां दी रीस ना कर। सुन गल्लां आकाश की, कीता आई रीस, ओ ता प्रेमा भगती आ जिहड़ी अवस्था तैनु दसी, एक दू जीबो लख होए, ए नानक नदरी पाई है, ओदी कृपा नाल मिलदी है। ते जे कृपा तो बिना कूड़ा कूड़ी ठीस, कूड़े बंदे दी कूड़ी गप होवेगी, कूड़े बंदे दा कूड़ होवेगा। मैं बेनती जड़ी कर लगा, सतगुरु ने प्रेमा भगती कीती, उस भगती दी एक मिसाल हजूर ने खोर दिती। दातार कहिंदे ने कि दुध नू चो के लियांदे ने, जिमीदार चोंदा है गवाले घरां विच चोंदे ने, जिस बर्तन विच दुध चो के लियांदा उस बर्तन विचों दुध दूजे बर्तन विच पलटिया जांदा है, भांडे विच पलटदे ने। हुण जिस भांडे विच दुध चोया ओदे अंदर दुध ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਲ ਦਰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਸੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਮੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਕਦੀ ਘਿਓ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਕਿਲੋ, 6 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਦੇਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਕੈਸੀ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੀਂਵ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖਤੀਐ, ਖਰਚੈ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ। ਕਸਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਬਤੀਐ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਖੈਦੀ ਆਪ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਖੈਰ ਖੈਰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖਤੀਐ, ਖਰਚੈ ਦਿੱਤ ਕਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਬਤੀਐ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਨੂਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਰੇ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਹੁਣ ਵਰਿਆ ਵਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਰਿਆ ਵਰਿਆ ਦਰ ਤੇ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਰਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਸ ਹੋਵਾ ਪਾਰਸੋਂ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਪਰਚੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਹੋਵਾ ਚੰਦਨੋ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਕੈਸੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਸ ਔਰ ਪਰਮ ਹੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਸੀ। ਪਾਰੋ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਖੇੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮ ਹੰਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਸਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮ ਹੰਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਤ ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਸ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰੂ ਕਿਦਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਇਹ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਧ ਖਹਿਰਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੋਧ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੇ ਭਾਈ ਕਦਾਰਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ
1: खून ए सी कि मैं उच्ची कुलदा हां। मन च आया फिर एक दिन आया मना जे भांडे मांज के भी जे इतने लंगर विच खौंचे मार के भी लकड़ा पाड़ के सारा दिन धुप्पे चुल्हे सामने बह के भी तेरी मैल ना गई तो मैल जाएगी कितों। कहन लगा अजे भी खौमे की मैल चुकी फिरना मैं ब्राह्मण। उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे तू झूठा है अपने मन नूं कहिंदे ने तू झूठा है तेनू कोई खत नहीं सुचा भोजन छके कल तो बाद जिहड़ा अंदर जात वाला भूत वड़िया इहनू झूठा भोजन दिता जाए। प्यारे सारे भांडे चुकने पर कुछ कु पतला चुक एक पासे रख लैनिया यह हकीकत है इहनू अत कथनी ना समझियो। गुरु अंगद साहब किवें बरखा करदे जदों सारिया चले जाना जिहड़ियां पतलां लुका के रखियां होणियां उहदे विच्चों सब्जी भाजी का किनका मात्र चुन के एक थां ते कठियां करके खा लैना। माता खीवी जी देखना सारा दिन सेवा करदा लंगर कितों छकदा है। अज देखिया कि जो सारे चले गए दोपहर दे लंगर तो बाद लोग के सारियां पतलां हूंज के आ पिया खाए। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा कि बाबा जी भाई जोध सारा दिन सेवा करदा पर पंगत विच लंगर नहीं छकदा। नहीं मने गुरु अंगद साहब फिर एक दिन अचनचेत आए इस नूं जे पढ़ना होवे ते पढ़ियो भाई वीर सिंह उहनां दा अष्ट गुरु चमत्कार। आए देखिया कि यह सज्जन पत्तल दे विचों चोके छोटे छोटे किड़के खांदा पिया। सतगुरु ने देखिया कहन लगे भाई जोध ये की करदे पए हो। इको दम कंब गए हाथ झाड़ के उठ खलोते कहन लगे की कर रहे सो। कहन लगे दाता अंदर झूठा ते झूठियां नूं झूठा ही भोजन चाहीदा है। अंदर झूठा है तुसी पंगत विच क्यों नहीं बैठते। कहिंदे ने अगे अंदर जात वाला भूत बैठा जो नाल कोई बहिंदा है ते कहिंदा मैं ब्राह्मण मैं उच्चा। कहन लगे इहनूं रहण दिओ नीवा इहनूं उदों समझ लगेगी जिन्नी देर तक पत्तलां विच नहीं रहिंदा ते लंगर दे भांडियां विच नहीं रहिंदा। सच्चे पातशाह देख के त्रुट पै माता खीवी जी कोल आए सिर ते हथ रख के कहन लगे भाई जोध तू सच्यार है तू झूठा नहीं तू सच्यार है। अज तो बाद लंगर विच बैठ के भोजन छकना है। जदों कहिंदे ने इन्ना शब्द सिर ते हथ रख के कहा सारे विद्वान ये मानते ने कि गुरु अंगद साहब दे हत्थां विचों इहो जी मानो वरखा निकली कि भाई जोध देवता बन गया सिर तो पैरा तक नाम दे नाल भिज गया। इत्थे फिर भाई साहब ने कहा जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर सारी ते अखीरली तो के कहन लगे पूरे सतगुरु पैर सवारी। पूरे गुरु ने उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रख दिता किरपा कर दिती। अज पंगत विच बैठ के लंगर छकन लगे किसे पुछ लिया कि अज इत्थे क्यों बैठे। कह लगे झूठ वाला भूत निकल गया है हुण अंदर गुरु बैठा ते गुरु नूं अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा भोजन ही देईदा। अंदर गुरु है हुण ओ गुरु अंगद साहब सरो समुंदर बन गए जिहड़ा उहनां कोल आया उहनां बरखा कीती। तां ते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है। गुरु अमरदास जी की भट्ट कीरत जी कहिंदे कथा बयान तो रहत है वह अकत कथा है। गुरु अमरदास की अकत कथा है ते किवें का अकत है जी उन्हां नाल बचन क्या एक जी ही साडी जीव एक है कछ कही ना जाई। की बयान करांगे गुरु अंगद साहब की कथा अकत है असी नहीं बयान कर सकते क्योंकि भट्ट पिछे भी कह के आए ने के दाता जी कन खर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत
2: एक

0: फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगता सी, पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वद्दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, ता अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.